0: Scientific report Janima Popia Tabare, Yojunego, Natown Setau Kunimasa Din Sharpo, Trishi Kebi, Natown Nasale Kunimaro, Dupom Alo, BC Kebare, a sin cansa diga pu sude, PhD Janga Dugaro, Didino Soha, a chain amyasugo, tipping a pia panga, jutri, a diga satongin, pietan kepon yabare, a little in the secundan low tishi de dre, a chata yedri san nuye yango, so in siate mishibao, throne at two. Shintani Tankere, a dole jimare, tasa dinosauri, shikere sura, di tabi me, arikauniga, a leching, don tangani, litan laupe, shida, balo, piovare, di dinosauro, shitang, asha, daneri tega, naga, gridan tega, titan net, through sharpo, do shikere, tainangaye, chayapon, di taruko, sweep you be, naga, titan, chayapon silo, ami be tavarishi.
1: Yamanu U Chronicle, me Tom Yingui, Gabatrin Lula Quen in it, Yamatrin Lula Quen. Nissin Nitai Mila Tong Yenigo, Gabatrin Lula Quenni, Achuga Gabasan is in Lula Quennihu, Yama Bata, Pianso, Jarepie, Gula Tamaka, Puesitaku Pieti, UNESCO, Apueziga, Tanguya, Gozeton Kunima, Satin, Tamakevare. I know Maro, Nissin Nitai, Gabananga, Mia Piama. Mila Tong Yeni Yao Dai, World Press Freedom Day, Kabatrin Lula Quinet Canary Go Jimba Ketabare. Drin Lula Quinet, the sign the Ale Taya Mi Chican Tampumia, Drin Lula Quengo Ale Tapo, the sign ya soya, Lenekai Apoesi Didi Pite, Ubri Bu, Dia Si Yin Ye, Ocho Yi Aperigo, Dai Don Noso, Jabare. Drin a low low guy in Domaho, Drin a low low guy change out, Pansi Cantadi, Drin the Mamia, Lemiao Ye Dread Lonso, Dai Don Jabare. Jebuya Apie, Drin Lula Quen Pomo Shidi Nangam Yama, Kabam Yao Changa, Liberal Democracy Sanepi Ochoti, Pompio B Nangam Ya Pitihu, Jebuya Apie, Yusa Ketabare, To Yusa Chema, Alonso Mamangan Zhao, Majadi and Nim Yarin Satin Dushi Lajabare, Anashin Nangam Yarin, Drin Lula Quen Mashidi Epima, Matu Sandole, Achodo, Pumpio B Nanga, A R G Nanga, Democracy Nanga, Hu Mayu, Tarketi, American Lu Nanga Nule, Asoya Puy Gong Song, Tamraga, the Dame Media Rigo, the Yaswe Sudi, Piet Driga, Maja Kana Sodolo, Pipua Niraba, Piketi Nanito, Donet Niba Ting Gala Dwin, Gaza Gam Yanga, Hamas, a jump at Puego Chi Mondi, Sissing Ye Piet, Ami Bega, Esri Sita, Sissing Ye Dreamer. Drin the man here, Nasajo, that song shown Ketaya di Pinet, but that be Julundu, me do the Uti Yom Yat, song Sansa Si Kaya Chimishi Keba. Isri Sitaka, Matota Satapu at the Pong, Drin the man, Mantilian at the Mu, Picat the Piachin, Picat Daikai di Niare, Kungi Gese, Low Sound Durigo, now mini a Ninga Domho, Nai a Ninga Drin, Dutia Jane Daikai di. Double tap, say Yazo, Mujulun, Tapia Mujang, Drin the Mamia, De Song Yadi, a pip yet drill, pip walk at the low. Maja did it, Drin Pat Dreamave, Lebanon down by Ma. Is there sit that lechen at Drin Tau to Utaman, De Song Kayabare? Nanito, don't need Niba Gala Drin, did that the cool drink, is there sit that it lechet pin. Drin the man, Niang Asage, or De Song Kayadi, a pip yet ma, Drin Lula Quint the Mindre. A so ya song, a pip yet pity die, midi democracy Nangan Gamia. Isrisitako dan kachin, lenne yang chamu peso chim lo sound kejaba. Ninga de gathering lo lacon, a saint tamet chem yare, two tattoo, po so di a chinadri, couldn't buy my pipuala navy, Yamana ingalo, drain the mamia, pansy town chani di nanga, drain the mamia, tapia kaya di die, song san sisi a ye you mumashi di nanga, yakin nitriga, a saint tet, mean dead lani di the pue pila kebare. Yaman nigat kabatrin lo lacon, saint dan. They are chow seko ma, yakunit, natong nesetau mila, donyani topian che ya. They are chow sechau pila kebare. Yamatrin lula quen chene, do dead la chinja mobe, kabama, yamaning and tet sodi, ning and doning anga, yamago, jo dead doa chinja pibare. A shile by who called jadi, asha died now by, ripaka, Ukraine, Russia, sipwe. Africa Daika Nenga Achuga Birun Sit Nyamanenga Birun Sit Sashi Di Sipwe Dwin Drin Ya Yu Jayin Drin the Mari at the Song Shoni Jaya Dalu ठी खाई डाया यादू फांसी ठाउछा खा यादू नई से निपन खाने यादू रे डाजेंगाने जागना ठी शीने जावारे यमा नई गान टने गांडे माटे पीखे दी गांधे डा ड्वे तरिंद मा ने सों खनो उमा को उ अठी तप्यक खा यारा पीखा मुड्वे ते सों शों यारा रे पीख पुआ खे दलो तरिंद लोता ने याजो फांसी अचें छा खान खे जाया भी पी पारे लेशी काला ड्वे तरिंद लोता सिशे उ अचें ठाउ ड्वे चान शी नी दे दलो अम्यासु का आना तें सिटका फांसी छें पी पी टोनाय लेने का इन आसु पेका फांसी अचें छा मु ये ड्वे छोले शी नी बारे यमा तरें लख छेने को फांसी खान था यदि तरें दमा ये ट्वे तरें लौचाउ लौचन तप्य खाया छे फांसी ठा से अत सौ यादि ये ट्वे डोफे टाइन टाने यादि छेने का लचन चन फे टाइन टाने यादि अनी ठा सूया मी फे पारे अछा दो नई गानु लु तरें लुलखन सैया उपरी सीमी सी कन तरें मीडिया म्या मिमी रो वे फे यी छे औौदी असोया इ ओजा लुआ मो सा अच्छा फे टाइन टा अने था महो हु सोया मी फे पारे पीर माने ठाइंगा तरें अलौ लुल सवा मलौ नाइदी अने था जाओ ऐ नि छे नाइंगा अछूरे छे साइ नि ठाइम भी यमा नई गानुगा अछे निरे को ठोप्यान छे लुमु को ये मीडिया ये ता फो प्यामु सत्वे मे म्याम हुरुगो अछे खांगा ये ता ठोलो ने जायादि अने थागा तरें अच्छे ले मैंगान टी जामु अमेंट के फिप्या ने दी पवन चें छे ने गो छोंगो ये ता नाइन छे मिशी दी मा ते छा बारे अन्य छो सो या ले कबा तरें लुल खो अने थागा ले से सू ने म्या स्वा ड्वें असो युआ सो अछे ने गो याव शी ने दलू म्यामा तरें लुल खो अने थागा ले से सू ने लेंगा खो ड्वें असो सो अछे ने गो याव शी ने दी अने था हु सो या मी फिप बारे शे
2: अखुद का मैसे बेचना गारो चमारो एम सी डी ए मेफे मीडिया फिटे मोखा मीडिया का ठौ नि इ बुक साउे फिपारे यमा सा पे यजे मूने अनुपिगो असें ठें तें मैं चे नाइमो साउ सा पी रे मा पिना सा जाया मा फिपारे मोमखा का इ बुक टेगो सेनौ छोता स्वाने इ बुक डॉ मोमखा डॉ खोमा आ पी नाइमा विशे मिमा पी दूरी गो तरें मैं अति मैं बेसन निर एम सी डी एन मोम खा तरें सने से सल छीट नाइमो ठाकू आफे पे जाबो टाइटों लाया बारे शें
3: खे माये अलें ते सच्चा वाला जी गो काई लो ठें छो में यारे विन्ये में नगा प्यो प्ये ज्वा वें वें त्वारे तन्या एदी न्यागा तु माये को यां हा लायों ब्याने अटू प्यो नू वें वालू एदी न्यागा तु माये जिन हा ने जी वा फपने टू मुए चू ठों तें लू एदी न्यागा तु माये अतन हा जो जा टौमन खतन ला ज्वा ज्वा वें लू एदी न्यागा तु माये अप्यों हा देवसरा शों लाओ ये दुवों जे वने टू लें ले ये जिन लू एदी न्यागा तु माये अमुया हा सिम्ये लिंगा नपोलियन ये ओं सितन हे ज्वेदी अला जा जा या या टच्वा लू एदी न्यागा तु माये टचन लो टवें लो टगदो जेता लन टलन लो इन्या येभ्यें दभ्यें लो हों हों ज्वा ज्वा टौपा सिम्या सूशा मुईल्वा इम्या तें ज्वा लेंपा लप्या टच्वा जीब्या नो सच्चा दें लखो दें रिहा चेंजे न्यान लो तें तें खा आओ गवा जी को टों लो त्वारे सतों ये सतला नठाउ टसे डो आंसा सूची लुम्याउ तो नीदगू